हो आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा, भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा, ओ सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा भाई।